0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষ পুৰ। এতিয়া 6 বজাত হিন্দীত আৰু 6:05ৰ পৰা ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই ফৰহত নাজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
2: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केशगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये

कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देशभर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंचे। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिससे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: নিয়োজনৰ লগতে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ এটা বাট যাতে প্ৰশস্ত হয় আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এক শক্তিশালী এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰশ্বিপৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাটো আছিল এই আঁচনিখনৰ মূল উদ্দেশ্য।
1: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ বাতৰি বিভাগৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত আজি নিশা 8:02 স্কুল বেগৰ বোজা শিশুৰ সোণালী শৈশৱৰ হেঙাৰ বিষয়ক এটি লাইভ ফোন ইন অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞ, লেখক তথা অসম জাতীয় বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদৰ সচিব ডাঃ নাৰায়ণ শৰ্মা আৰু অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ প্ৰধান সম্পাদক তথা অখিল ভাৰতীয় প্ৰাথমিক শিক্ষক সংঘৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে। অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়ত শ্ৰোতাসকলে 9435404-05223 আৰু 03612661876 এই দুটা নম্বৰত ফোন কৰি সমল ব্যক্তি দুগৰাকীৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰিব। অনুষ্ঠানটিৰ আঁত ধৰিব জিন্তী ৰাণী ডেকাই। ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মেডিচিন বিভাগৰ অৱসৰী মুৰববী ডাঃ গিৰীন্দ্ৰনাথ গগৈৰ কালি সন্ধিয়া মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ সময়ত বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা গৱেষকগৰাকীৰ বয়স হৈছিল 78 বছৰ। তেখেতৰ মৃত্যুত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন আৰু কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ লোকে শোক প্ৰকাশ কৰে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল। পৰৱৰ্তী বাতৰি পুৱা 9 বজাত শুনিবলৈ পাব।
2: বাৰিশ কে পানী কি এক এক বুন্দ কো হামে বচানা হে তো মেৰা খাস আগ্ৰহ হে বৰ্ষা কা বুন্দ বুন্দ পানী হাম মিলকৰ কে বচায়ে।
3: জল হে তো হাম হে। আইয়ে ঘৰোঁ অফিসোঁ মে ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং তকনিক অপনায়ে। রিচার্জ পিট অর শাফ্ট বনবায়ে, অনুপযোগী বোরবেলো কো ঠিক করে, জলাশয় সে গাদ নিকালে, অধিক সে অধিক পেড় লগায়ে। ইস বারিশ আইয়ে জুড়ে ক্যাচ দ্য রেইন অভিযান সে।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
5: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
3: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
5: हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
3: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तीन दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन तीन परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's...
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
5: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
7: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
8: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत

0: और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आर्म फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और यह तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, आइए कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे देती हूँ। आज शनिवार है। आज का पहला कार्यक्रम 12:12 पर फिल्म संगीत, 12:30 पर कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर मजली से कवाली, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। एक बज के 10 पर कार्यक्रम गुंजन, 1:40 पर कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत, 2 मिड डे न्यूज, 2:15 पर हिंदी में समाचार, 2:30 पर कार्यक्रम नजराना और इसी के साथ कार्यक्रम का अंत होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 287.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला कार्यक्रम, फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना, दिल ढूंढता है फिल्म से, भूपेंद्र की आवाज़ में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्स और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे मौसम फिल्म से गीत, भूपेंद्र की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत से सजाया है मदन मोहन ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

सैनिक भाइयों, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे देती हूँ। कल रविवार है। कल का पहला कार्यक्रम 12:12 पर फिल्म संगीत, 12:30 पर कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम सबरंग, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

1:10 पर कार्यक्रम गीतिका, 1:40 पर कार्यक्रम शीर्षक संगीत, 2:00 मिडडे न्यूज, 2:15 पर हिंदी में समाचार, 2:30 पर गीत अपना धुन पराई, और इसी के साथ कार्यक्रम का अंत होगा दिन के 3:00। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मजली से कवाली। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, मन्ना दे और मीना की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है ताजमहल।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मजलिसे कवाली। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, आशा भोसले, मुबारक बेगम और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है आरजू।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गाना मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हंसते जख्म।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289 मीटर, 1035 किलोहर्ट्स और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुंजन। सैनिक भाइयों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, अभी का कार्यक्रम आप डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं 529.1 मीटर पर। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम गुंजन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम है क्यों।

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना केसरिया फिल्म से, समदेर खान की आवाज़ में।

सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गाना घूमर फिल्म से, फिल्म घूमर फिल्म से सीमा मिश्रा की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत

0: भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
1: कंग्रेचुलेशंस इन स्पेस फॉर फैसिलिटेटिंग
2: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
1: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
0: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
3: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत के नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
4: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
4: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
0: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
4: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित

0: सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश

0: का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएफ फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नजराना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना, दूसरा आदमी फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में।

0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है खामोशी।
1: वो शाम कुछ

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नजराना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म का नाम है द बर्निंग ट्रेन।

इसी गीत के साथ नजराना कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सैनिक भाइयों, आज का प्रसारण भी यही समाप्त होता है। अभी से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रेनबो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कल आपसे फिर मुलाकात होगी 12:10 पर। तब तक के लिए सुनंदा तिवारी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: વાણી આકાશવાણી આકાશવાણી દિલ્હી પ્રસ્તુત કરતા હૈ વિશેષ ફોન ઇન કાર્યક્રમ રેડિયો ડોક્ટર.
1: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है. आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है. नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत. अभिनंदन स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का. नमस्कार श्रोताओं, आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, उनका क्या योगदान होता है हमारे जीवन में और उनका महत्व हमारे जीवन में कितना है. ये तो सब हम मानते हैं, हमारे सब श्रोता जानते हैं कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं, हमें जीना सिखाते हैं और उनकी भूमिका हमारी जिंदगी में ताउम्र हमारे साथ रहती है. लेकिन क्या सच में ये भूमिका निभाते निभाते कुछ बातों का ध्यान रखना हम भूल जाते हैं? क्या जरूरी होता है कि माता पिता को भी बताया जाए कि उन्हें कैसे समझना है, कैसे सिखाना है, कैसे बच्चों को बड़ा करना है? ये कुछ बातें हैं जो हम उतना बात तो नहीं करते हैं रेडियो डॉक्टर में, लेकिन हमने सोचा इसको बात करना बेहद जरूरी है. तो क्यों ना इस बात से आज हम शुरुआत करें और इस विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सबकी भागीदारी भी हर बार की तरह बहुत जरूरी है. सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराती हूं हमारे आज के रेडियो डॉक्टर्स से, हमारे आज के एक्सपर्ट्स से जो नेविगेट करेंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम में और आपको बताएंगे व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स. तो हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद हुबे अली, आप हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ इंडिया में. बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका.
2: नमस्कार.
1: और हमारी दूसरी गेस्ट हैं अलका मल्होत्रा जी, आप सोशल एंड बिहेवियर चेंज स्पेशलिस्ट हैं. बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए आप दोनों यहाँ आए हैं. नमस्कार अलका जी.
3: नमस्कार. नमस्कार टू एवरीबॉडी.
1: और हम स्वागत तो कर चुके हैं अपने स्पेशलिस्ट का. मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर अली, क्या होता है उद्देश्य ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाने का? व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट?
2: क्योंकि अभी बहुत कुछ देखा गया है कि जब पेरेंट्स और बच्चों का जो कनेक्ट होना चाहिए वो कनेक्ट कहीं ना कहीं हमारा खत्म होता जा रहा है. लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं और मोबाइल और टेक्नोलॉजी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि जो बच्चों का पेरेंट्स का आपस में जो कनेक्ट होना है वो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट कम हो रहा है. इसी कनेक्ट

0: को वापस जोड़ने के लिए, ताकि माँ बाप बच्चों के साथ किस तरह से अपने घर में जुड़ सके।
1: जी, आपने कहा कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, और कनेक्ट होने के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, और हमारे साथ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं अलका जी। आप ये बताइए कि ये कनेक्ट कम क्यों हो रहा है, एंड हाउ इज कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट? कम्युनिकेशन क्या जीवन में रोल प्ले करता है?
2: जब से बच्चा पैदा होता है तभी से बच्चा माता और पिता के साथ एक लगाव शुरू करता है, और सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन बच्चे की घर में शुरू होती है माता पिता के साथ। तो इसीलिए माता पिता का कनेक्ट बच्चे के साथ होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा स्कूल, दादी दादू, सबको, नाना नानी, सबको बाद में मिलता है, सबसे पहले माता और पिता के साथ जुड़ता है। तो इसीलिए माता पिता के साथ का लगाव बहुत ज़रूरी है, और वो लगाव बचपन से शुरू होकर एडोलेसेंस में जब बच्चे अपने करियर चूज करते हैं, कैसे अपने माता पिता से डायरेक्शन ले सकते हैं, करियर में क्या उनको जानकारी होनी चाहिए, वो सब भी गेटवे जो है वो माता पिता के द्वारा होता है। टीचर से सीखते हैं, पर घर में क्या परिस्थिति है, घर में क्या करना चाहिए, वो माता पिता के साथ का कनेक्ट है। इसीलिए माता पिता का बच्चे के साथ नर्चरिंग, शुरू में लगाव, स्टिमुलेशन से लेकर जबकि ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, अंत में जब बच्चा घर छोड़ के नौकरी करने लगते हैं, अपना परिवार बनाने लगते हैं, तब तक माता पिता का जुड़ाव और कम्युनिकेशन बहुत जरूरी हो
1: जी। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, कनेक्ट बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल हम ये भी सुनते हैं कि जब बच्चे एडोलेसेंट में आते हैं, छोटे बच्चे तो फिर भी हम देखते हैं कि माँ बाप से हर चीज पूछ लेते हैं, उनसे सलाह भी लेते हैं स्कूल जाते वक्त, बच्चे पढ़ाने लिखाने में भी, बच्चों के जब एग्जाम होते हैं माँ बाप उसमें पूरी तरह से दखल रखते हैं, लेकिन जैसे बच्चा एडोलेसेंट एज में आता है तो हम अक्सर माँ बाप को कहते सुनते हैं कि अब तो बच्चा सुनता ही नहीं है, अब तो हमारी चलती ही नहीं है, अब तो हमें डरना पड़ता है बच्चों से। तो ये जो डिफरेंस आता है, ये एडोलेसेंट एज में जब आता है, इसको कैसे डील किया जाए, ये इतना इम्पोर्टेंट है?
2: सबसे ज्यादा जरूरी है माता पिता का बच्चे के साथ जुड़ना, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन जो हम कहते हैं। बेसिकली क्या है कि बचपन से एडोलेसेंट्स में जाते हुए और ज्यादा इंटेंस चेंजेस होने लग पड़ते हैं बच्चों में, वो अपने आप को समझना शुरू करते हैं, वो एक इंडिपेंडेंस की सोच रखने लग पड़ते हैं, उन्हें लगता है कि अब हाइट तो मेरी बढ़ गई है, अब मेरा ओपिनियन भी बढ़ना चाहिए, तो उनको ज्यादा जानकारी मिलती है स्कूल से। तो माता पिता का रोल उसमें शुरुआत से ही है लिसनिंग का, सबसे पहले सुने अपने बच्चों को, उनको समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो उनको जज नहीं करना है, उन्हें अपने बच्चों से डरना भी नहीं है, उन्हें बच्चे को साथ लेकर चलना है, सुनना है, समझना है, उससे बातचीत करनी है। अगर बातचीत करते रहेंगे अपने बच्चों के साथ तो जुड़ाव रहेगा, और जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकल कर आएंगी जहां पर वो अपना सुझाव भी दे सकते हैं और बच्चे की सोच को समझकर उसे बदल भी सकते हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन है, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। वो जमाना गया जब हम लोग छोटे थे और हम अपने माता पिता की बात, क्योंकि वो पिता कह रहे थे तो उस बात को समझ लिया। अब बच्चों को जानकारी है, मोबाइल है, स्कूल है, उनके दोस्त हैं, उनको बहुत सारी जानकारी मिल रही है, कभी कभी किसी किसी विषय में उनकी जानकारी माता पिता की जानकारी से भी ज्यादा होती है। तो उस किस्से में, उस सिचुएशन में बच्चे की बात सुनना, उसे समझना, और अपनी समझ से उसे बातचीत सबसे ज्यादा जरूरी है। रिस्पेक्टफुली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बात बनेगी तो बात बढ़ेगी ना,
1: बात से बात बनेगी, बिल्कुल। और ये बिल्कुल आपने सही बात बोली कि पहले से हम कंपेयर करते हैं कई बार कि हम जब छोटे थे तो हम तो ऐसे नहीं करते थे, हमें जो कहा जाता था हम सुन लेते थे, लेकिन इसको जज नहीं करना है, जैसा आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोली। और जैसे समय बदलता है उस हिसाब से हमें भी अपने आप को चेंज करना है। बच्चों का एक दूसरी जनरेशन जब होती है तो उसका एक अलग माइंडसेट होता है और अलग उनका एक सारी दुनिया से कनेक्ट होना है। जैसे आजकल डिजिटल एज है तो बहुत सारी चीजें आ भी गई हैं, तो इस बारे में हम और बात करेंगे। लेकिन अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जो आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, मैं हूं आपके साथ शालिनी मित्तल और आज बात कर रहे हैं पेरेंट्स पर। और आज हमारे साथ हमारे दो विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद अली और अलका मल्होत्रा जी। और हम बात कर रहे थे पेरेंट्स की आवश्यकता क्या होती है बच्चों के लिए, उनकी क्या महत्ता होती है, इस पर तो कोई वाद विवाद है ही नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं एक दूसरे के लिए वो लाइफ में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मिस कम्युनिकेशन, जैसा आपने बताया कि सही कम्युनिकेशन या कनेक्ट ना हो तो भी प्रॉब्लम बहुत विकराल रूप ले सकती हैं। और भारत की अगर हम बात करते हैं तो पेरेंटिंग में अक्सर महिलाओं को ही ज्यादा फोकस में रखा जाता है और पुरुषों से उतनी ना तो उम्मीद की जाती है ना उनको पेरेंटिंग में उतना शामिल किया जाता है। तो अगर हम पुरुषों के रोल पर बात करें, फादर के रोल पर बात करें, तो अलका मैम आप क्या कहेंगी, क्या रोल होना चाहिए आपके हिसाब से फादर का?
1: पेरेंटिंग जो है ना, ये एक जैसे शादी 50-50 का रोल होता है ना, वैसे पेरेंटिंग भी 50-50 का रोल होता है। बहुत सारे स्टडीज की गई हैं और बार बार निकल के आता है कि माता से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है, माता उसे समझाएगी, बचपन से माता केयर का रोल करेगी, माता स्टिमुलेशन करेगी, माता खाना खिलाएगी, जबकि ये सारी चीजें पिता कर सकते हैं। और पिता जब करते हैं तो उनकी बॉन्डिंग अपने बच्चे के साथ बढ़ती है। तो चाहे वो स्टिमुलेशन है, कितने पिता हैं जो अपने बच्चे को उठाते हैं, गोद लगाते हैं, गले लगाते हैं, हग करते हैं, कडल करते हैं, ये सब चीजें जो फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है ना पिता और माता के साथ, उसके साथ लगाव बढ़ता है। तो पिता के साथ अगर पिता ये ही रोल करेंगे तो उनके साथ भी लगाव जो है बच्चे का वो बढ़ेगा बचपन में। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, अभी के गाने में भी हमने सुना से पिता से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, चॉकलेट
0: जी
1: जो कि बिल्कुल ठीक है, आप चॉकलेट एक्सपेक्ट करिए अपने पिता से, पर साथ साथ आप पिता से कहानी भी एक्सपेक्ट करिए, आप पिता से ये भी एक्सपेक्ट करिए कि वो आपको घूमने लेके जाएंगे। एक हमने स्टडी करी थी 3 प्रदेशों में और निकल के आया कि पिता जो है वो घर लौट के बच्चे को अपना मोबाइल फोन दे देते हैं। वो सोचते हैं कि हमने टॉय दे दिया, ये हो गई मेरी पेरेंटिंग का रोल। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चा मोबाइल फोन नहीं चाह रहा है, बच्चा माता पिता से बात करना चाह रहा है। तो बच्चे के साथ खेलिए, उसे बातें बताइए, उसको कहानियां सुनाइए, उसको उठाइए, उसको गोद में लीजिए। एडोलेसेंट्स में हम लोग देखते हैं नॉर्मली फादर जो है ना वो एब्सेंट और फन पेरेंट माना जाता है, चॉकलेट देने का पेरेंट, जबकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चे से बातचीत करना, लगाव बनाए रखना, उसे गोदी में बिठाना और उससे अपना प्यार बढ़ाना। तो चाहे वो खाना खिलाने का समय है या वो हग करने का समय है, सुलाने का समय है, पिता इक्वल रोल पे कर सकते हैं
0: जी। और जैसे आपने कहा, हमने और जिक्र किया कि कई बार अगर हम पुरानी कुछ पीढ़ियों पर नजर डालें तो बहुत कैटेगोरिकली रोल डिस्ट्रीब्यूटेड था, जैसा कि अब वो लाइंस थिन हो रही हैं या ब्लर हो रही हैं या कहीं कहीं गायब भी हो रही हैं, क्योंकि अब इक्वली वुमेन भी वर्क कर रही है, घर से बाहर निकल रही है और उतना ही दिन या समय वो अपने कार्यस्थल पर भी रहती है। तो उसको पूरी तरह से बच्चे को देखना या उससे एक्सपेक्ट करना कि वो पूरी तरह से एक हाउसवाइफ की तरह देख पाए, वो भी उतना इजी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जब रोल या चेंजेस होते हैं समाज में तो उस तरह से एक माइंडसेट में भी रोल या डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे डॉक्टर अली इस बारे में आप, कि कैसे ये चेंजेस माइंडसेट्स में आने चाहिए?
2: हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जो मैडम ने बताया 50-50 का जो रोल है, क्योंकि अभी जैसे महिलाएं भी वर्क प्लेस पे बहुत टाइम गुजारती है तो दोनों अगर इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जैसे गाने में सुना कि माँ लोरी सुनाएगी तो ये पिताजी भी लोरी सुना सकते हैं। एक मेरे को लगता है कि जो स्टीरियोटाइप बन चुका है कि अगर कोई फादर है बच्चे को देख रहा है तो बहुत चैंपियन है, वो स्टीरियोटाइप बदलना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है। तो दोनों अगर मिलके करेंगे तो बच्चे का अपब्रिंगिंग भी होगा। और बहुत से जगह में बहुत से स्टडीज भी ये निकल के आ रहा है कि अगर दोनों माता और पिता दोनों बच्चे के अपब्रिंगिंग में इक्वल ये लगते हैं तो बच्चे का मानसिक, फिजिकल और इमोशनल तीनों भी अपब्रिंगिंग अच्छे से होते हैं।
0: जी, और बिल्कुल सही कहा आपने कि हम सिर्फ यहाँ पर फिजिकल वेलबींग की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेंटल, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल पूरी तरह से एक पर्सनालिटी की अपब्रिंगिंग की बात कर रहे हैं कि वो बैलेंस्ड एक पर्सनालिटी बने। और यहाँ पर एक मैसेज हमारे पास आया है, लिखने वाले हैं नरदेव सिंह चौहान कोटद्वार उत्तराखंड से, लिख रहे हैं डॉक्टर अली और डॉक्टर अलका जी, वर्तमान में 3 जनरेशन मौजूद हैं, 1950s, 1990s और 2026। आज के समय में पेरेंट्स को शिक्षित और अनुशासित होना जरूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए माँ बाप ही रोल मॉडल हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? और बिल्कुल यही मेरा अगला प्रश्न भी था अलका जी आपसे, कि कई बार होता है कि हम बच्चों को बताते हैं कि ऐसे करिए ऐसे करिए, लेकिन हम कई बार वो खुद फॉलो नहीं कर पाते, चाहे फोन से रिलेटेड बात हो कि हम मोबाइल पर हैं और हम बच्चों के कहेंगे कि मोबाइल मत देखो ज्यादा तुमको नुकसान करेगा, या फिर ईटिंग हैबिट्स हो, या फिर अपनी हेल्थ या हाइजीन की बात।

0: बच्चे को कह रही हैं कि देखिए तुम अपना समय फोन के ऊपर आधा घंटा दीजिएगा, आधे घंटे से ज्यादा नहीं, और आप सारा टाइम फोन पे लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बच्चा समझ रहा है कि ये रूल इनके लिए नहीं अप्लाई करता, मेरे लिए करता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे में क्या डिफरेंस है जो कि इनमें नहीं है। तो धीरे धीरे करके जो भी आप अपने बच्चे को दिखाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसे खुद करके दिखाइए, तो उससे बच्चा सीखने लग पड़ता है। अब हम जेंडर सोशलाइजेशन की भी बात करते हैं कि महिला काम करने जाने लग पड़ी है, पुरुष किचन में जा सकते हैं, पुरुष खाना बना सकते हैं, पुरुष खाना परोस सकते हैं, केयर कर सकते हैं बच्चों की भी घर में और बड़े बूढ़ों की भी। यही चीज अगर वो अपने घर में देखेंगे कि मेरे पिता भी किचन के अंदर जाते हैं, मेरी माता लाइट बल्ब बदल लेती है, तो बच्चे समझ जाएंगे कि ये कोई जेंडर्ड रोल्स नहीं है कि ये पिता ही कर सकता है और ये माता नहीं कर सकती, और ये माता ही कर सकती है और पिता नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं रोल मॉडलिंग। तो जब आप पेरेंट बन जाते हैं तब ऑल द मोर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही नहीं है कि आप क्या बता रहे हैं, पर आप क्या दिखा रहे हैं अपने बच्चे को, और वही चीज बच्चे बार बार सीखते हैं। शाउटिंग इज अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल। आप बच्चे को बोलिएगा कि आप ऊंची आवाज में बात मत करिए, और आप माता पिता एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, हर एक बात में डिसअग्री कर रहे हैं, हर एक बात में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो बच्चा तो समझ गया ना उसी समय कि ये तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के
1: और माता पिता ये समझ रहे हैं कि बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो बहुत छोटे हैं, लेकिन वो सब ऑब्जर्व
0: वो
1: करते
0: सब
1: हैं।
0: ऑब्जर्व कर ले।
1: जी जी जब हम स्लीप की बात करें, हाइजीन की बात करें, अलका जी ने बताया किस तरह से हमें करके रोल मॉडल बन के दिखाना है। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, कई बार हमने ऐसा भी देखा है कई घरों में कि बच्चों को बहुत ज्यादा फोर्स या प्रेशराइज किया जाता है कि आप पढ़िए, आपको कुछ बनना है, या कुछ उनकी ऐसी पेरेंट्स की अपनी इच्छाएं हैं जो वो नहीं कर पाए या कुछ अचीव नहीं कर पाए, तो वो उनको प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, और इससे कई बार बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। अगर अच्छा पेपर नहीं हुआ तो कई बार वो ऐसा स्टेप भी उठा लेते हैं कि अपने को नुकसान पहुंचाना, या सुसाइड तक बात कई बार पहुंच जाती है, मेंटल उनका ब्रेकडाउन भी हो जाता है। तो इस तरह से किस तरह से उनको हैंडल किया जाए इमोशनली कि मेंटल हेल्थ उनकी सही रहे, और अगर ऐसा कोई डील कर रहा है तो क्या सिम्टम्स उसमें देखने चाहिए कि उन्हें पता लगे कि मेरा बच्चा उस तरफ तो नहीं जा रहा है।
2: सबसे पहले ये प्रश्न बहुत अच्छा है। इसमें ये देखें कि हमने एक स्टडी की थी कि ड्राइवर्स क्या है, ये मेंटल हेल्थ के बच्चे जो शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है या सेल्फ हार्म है, तो उसके हमको तीन ड्राइवर्स मिले हैं। ग्लोबली भी ये स्टडी है, यूनिसेफ WHO की, और इंडिया में भी ये स्टडी है। एक तो जो घर में कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बच्चों के, खास तौर के यूथ यंग एडल्ट्स के ऊपर जो मानसिक प्रेशर बढ़ रहा है, बच्चे इसे कोप नहीं कर पाते, इसलिए ये सेल्फ हार्म टेंडेंसीज या घर से बाहर रहना, दूर रहना, अकेले रहना ये शुरू कर देते हैं। ये एक हुआ। दूसरा, इस एज में पर्टिकुलरली यूथ्स और यंग एडोलेसेंट्स में लव अफेयर्स की वजह से भी काफ़ी बच्चे एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और तीसरा जो आपने बताया प्रेशर, या तो एग्जाम का प्रेशर है या जॉब लगने का प्रेशर है, ये तीन जो ड्राइवर्स है ये बच्चों के लिए मानसिक संतुलन को बिगाड़ने में बहुत काम कर रहा है। इसके नॉर्मल सिम्टम्स यही होते हैं कि बच्चा खाना, अगर आपके साथ बैठा है तो आपके साथ बैठना नहीं चाहता, बात आँख मिला के करना नहीं चाहता, अकेले अकेले ज़्यादा रहना चाहता है बच्चा बच्ची जो भी हो, तो आइसोलेशन अपने आप को कर लेना, ये फर्स्ट सिम्टम है। दूसरा, खुल के बात ना करना, हंस नहीं पाना, और आँख में आँख डाल के बात नहीं कर पाना। और इसमें जो पेरेंट्स का जो मेन रोल है, थेरेपिस्ट तो जो करेगा सो करेगा, पेरेंट्स को चार चीज़ें, अगर आपका बच्चा इस किसी भी स्थिति से गुजर रहा है, सोशली अपने आप को एक्सक्लूड कर रहा है, तो चार चीज़ें करें। एक तो उसकी बात को आप समझे, पहले उससे बात करें, लिसन एंड डू नॉट एडवाइस। हम लोग बहुत जल्दी बच्चे को एडवाइस करना शुरू कर दें, तो बच्चे की बात को हम सुने, एक। दूसरा, हम उसको ये बताएं, उसको रीअश्योर करें कि भाई मेरा आपको सपोर्ट होगा, जो भी परिस्थिति आप गुजर रहे हैं, वी आर देयर टू हेल्प यू, और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तीसरा, अगर उसको कोई ख्यालात आ रहे हैं या उसको कभी कभी हेलुसिनेशन डेल्यूजन्स हो रहे हैं, तो उसको हम एक्सक्लूसिवली चैलेंज ना करें, भाई ऐसे कुछ नहीं होता है, एकदम से जो नहीं करके हम कहते हैं, तो ये ना करें। और चौथी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, बच्चे के साथ में मिलके उसके साथ सॉल्यूशन को ढूंढे, ना कि अपना सॉल्यूशन उसके ऊपर थोपे। तो अगर ये चार चीज़ें हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चों को हम इसमें से निकालने की कोशिश भी कर सकते हैं। या एक और होता है कि बच्चा अगर ऐसे कुछ कर रहा है तो उसका ये ये स्कूल में प्रॉब्लम है, स्कूल चेंज कर दिया, यहाँ पे है नानी के घर भेज दिया, शादी करके दे दो, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। उसको आप बात को समझिए, थेरेपिस्ट के पास ले जाइए। अभी तो बहुत से सिस्टम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर बहुत काम की है। टेलीमानस में आप बात कर सकते हैं 144-16 नंबर।

0: 1446 पे 24/7 कॉल करके वार्तालाप किया जा सकता है, काउंसिलिंग की जा सकती है, मनोदर्पण के थ्रू इससे बात की जा सकती है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक से आप सब डिस्ट्रिक्ट में और सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो उसके नीचे CSC यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो काउंसिलर है उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है, तो वहाँ जाके भी आप वार्तालाप किए जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से कर रही है, प्रॉब्लम यह है कि हम बच्चे की भावना को समझें और उसको सही दिशा में ले जाएं।
1: जी, और बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हमें इस कार्यक्रम में आज पता लग रही हैं। हमें श्रोता लिख रहे हैं कि उन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है। ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, विषय हमें पसंद आ रहा है और बहुत अच्छी जानकारी आपके विशेषज्ञों के माध्यम से हमें मिल रही है। तौसीफ अहमद हमें लिख रहे हैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर से कि इनकी एक बेटी है, अभी 2 साल की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन चाह रहे हैं कि किस तरह से उसको पाले पोसे, इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ मदद मिल सके।
0: 2 साल का बच्चा है, सबसे पहले तो बच्चे के जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपका हुआ होगा डिलीवरी, तो मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड करके आता है, उस कार्ड में लिखा होता है कि 2 साल के बच्चे की क्या माइलस्टोन्स रहने चाहिए। बच्चे को आप साथ में रखिए, बच्चे को आप खिलाने में आप माता और पिता दोनों भी भागीदारी करिए, बच्चे से बात करिए। हम लोगों को लगता है कि 2 साल का बच्चा क्या ही बात करें, मगर आप जितना उससे बात करेंगे उतना सोशल और इमोशनल कनेक्ट माता पिता के साथ बच्चे का बढ़ता है। तो जैसा जैसा बच्चा आपके साथ बड़ा हो रहा है, आप बच्चे को उसी तरह से साथ में बड़ा करिए, ना कि अभी बहुत से घरों में देखा जा रहा है कि माता पिता दोनों जॉब पे है तो नैनी के साथ ही बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, तो वो कनेक्ट हमारा बच्चे के साथ रहा नहीं जाता है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आपका बच्चा वो छोटा है, उसके साथ अगर आप ग्रो होंगे तो जो एडोलेसेंट अवस्था में आके अगर हम बच्चों को, फिर वहां पे प्रॉब्लम्स आते हैं और बच्चों को बोलते हैं, तो बच्चों को भी लगता है कि अब इनको मेरी याद आ रही है और ये अब मेरे ऊपर जो है बॉसिंग कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए, तो ये छोटे बच्चे के साथ जब आप खुद बड़े होंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपके नहीं आएंगे।
1: साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि बहुत कमजोर है इनकी बेटी, तो इसका मतलब फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जैसा आपने बताया इमोशनल तो देना ही है, फिजिकल पे भी इन्हें ध्यान देना होगा। देवदत्त पारसोलिया जी हमें लिख रहे हैं कि इन्हें ये विषय बहुत पसंद आया है और एक्सलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो आपको धन्यवाद, आप इस तरह से हमें मैसेज कर रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं पेरेंट्स पर विशेष रेडियो डॉक्टर। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक गीत सुनकर वापस आएंगे। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, हमसे पूछते रहिए, हमारे एक्सपर्ट्स 4 बजे तक स्टूडियो में रहेंगे।
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप हैं रेडियो डॉक्टर में, हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार सानी जी, मैं यशपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी जी यशपाल जी, बताइए क्या पूछना है आपने? विषय सुन लिया हमारा।
2: टॉपिक अच्छा है, दोनों एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, बोल रहे हैं, आपको सुन रहे हैं हमारे स्पेशलिस्ट। आज बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
2: मेरा सानी जी, मेरा इशू है ना वो हेल्थ से रिलेटेड है। अब जैसे आजकल के जो पेरेंट्स हैं स्पेशली, मतलब जो 40 से जिनकी कम है, 40 से कम के, तो उनकी खुद की ये जो लाइफ स्टाइल है, मतलब ऐसे अनहेल्दी है, डिसिप्लिन नहीं है, दोनों वर्किंग भी हैं, तो उनको ज्यादा हेल्थ का इम्पोर्टेंस भी नहीं इतना, आई थिंक दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस इम्पोर्टेंस। तो वो इस वजह से या कुछ दूसरे मजबूरी से दे, मतलब वो बच्चों को भी उतना नहीं टेक केयर कर पाते हैं। तो सबसे मुझे ये फियर है, लगता है कि मतलब बच्चे भी जो आगे भविष्य में भी उनको हेल्थ वाइज उनका जो है ना इशू वो रहेगा, दे विल नॉट बी हेल्दी जनरेशन। बस एक मेरा इसी पर।
1: जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं यशपाल जी, और इसीलिए जरूरत पड़ रही है हमें ये कार्यक्रम भी करने की, क्योंकि सीधे कहीं ना कहीं ये जो रोल है पेरेंट्स का, ये उनके स्वास्थ्य पर, हमारे आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। जैसा आप डर दिखा रहे हैं, ये डर हमारा भी है, और इसीलिए हम आज गेस्ट लेकर आए हैं, स्पेशलिस्ट लेकर आए हैं, कि वो बता रहे हैं कि सीधे सही अच्छी पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए और हेल्थ पर कैसे ध्यान देना चाहिए। कुछ आप और कहना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे?
2: हाँ नहीं, बस इनकी एडवाइस थोड़ा लेना चाह रहा था कि इसमें कैसा कुछ कम कुछ पॉसिबिलिटी है, मतलब ठीक होने का कुछ।
1: जी जी, मैं हमारे विशेषज्ञ से पूछ लेती हूँ, किस तरह से माइंडसेट चेंज किया जाए बच्चों?
3: देखिए, हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सही समय पर जो भी भोजन कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सही समय पर खाए। आप जब भी खाना खाते हैं तो अकेले अकेले ना खाए, हम जब आप पेरेंट्स खा रहे हैं, बच्चों के साथ मिलकर खाना खाए। और खाने में जो जंक फूड है इसको हम लोग अवॉइड करें अगर हेल्दी रहना है। खाने के साथ साथ में फिजिकल एक्टिविटी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। और जो कुछ हमारी बुरी आदतें हैं, जैसे फ्रूट्स खा रहे हैं साथ में चाय पी रहे हैं, तो फ्रूट्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं। तो आप खाने के घंटा पहले और खाने के घंटे बाद तक चाय कॉफ़ी जैसी चीज़ों को अवॉइड करें। तो अच्छी आदतें डालें, हम लोग खुद भी हेल्दी रहें, बच्चों को भी इस हेल्थ की आदत डालें, हेल्दी फूड की।
4: हेल्दी फूड और एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
1: जी, एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, और ये आजकल देखा जा रहा है कि जो सर्वेज हुए हैं कि बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, धूप में नहीं खेल रहे हैं। जैसा आपने एक्सरसाइज की बात की कि बैठे बैठे ही, क्योंकि आजकल गैजेट्स बहुत हैं, इलेक्ट्रॉनिक फोन पर या टीवी पर या मोबाइल पर वो मैक्सिमम समय अपना यूज कर रहे हैं, उसके कारण बहुत सारी फिजिकल भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको, जैसे नेक पेन और ये। इस पर हम कार्यक्रम करते रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो इस तरह की, जब ऑनलाइन बहुत ज्यादा बच्चे रहते हैं और उनको समझ नहीं होती है उस एज में, कई बार बहुत यंग छोटे बच्चों को भी ये सारी सुविधाएं दे दी जाती है पेरेंट्स द्वारा, तो जब बहुत छोटे हैं उनको पता नहीं है किस तरह से साइबर फ्रॉड हो सकता है उनके साथ, तो ये सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों जाती है? या ऑनलाइन सेफ्टी, और किस तरह से पेरेंट्स भी खुद समझें और बच्चों को समझाएं?
4: एक्चुअली सबसे ज्यादा

0: जरूरी ऑनलाइन स्पेस में ये है कि आप खुद अपना बिहेवियर मॉडल करें. तो अगर आप ऑनलाइन स्पेस में कम रहेंगे तो फिर ही आप बच्चे को बोल सकते हैं कि आप भी ऑनलाइन कम रहिएगा. फर्स्ट तो अपने आप को मॉडल करिए कि आप अपना समय कितना बिता रही हैं फोन पे, कितना समय पिताजी बिता रहे हैं फोन पे, कितना वो स्क्रॉल कर रहे हैं रील्स को. और फिर आप बच्चे को कह सकते हैं कि चलिए आप दोनों, अब उसमें फिर कॉन्वर्सेशन बातचीत बहुत जरूरी हो जाती है कि बच्चे के साथ तय किया जाए कि आप फोन पे कितना समय बिताएंगे. देखिए कुछ तो ऑनलाइन काम आजकल स्कूल से भी आने लग पड़ा है, तो इसीलिए अगर हमें उसको भी डिस्काउंट करना है तो दोनों को अग्री करना पड़ेगा कि आपके स्कूल के काम के लिए इतना समय और आपकी अपनी एंटरटेनमेंट, आपके फ्रेंड्स को कैच अप या जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए इतना समय, वो आपको बच्चे के साथ तय करना पड़ेगा. यदि आप बच्चे के साथ तय करेंगे तो फिर उसका उसको बच्चे के साथ ही ट्रैक करिए कि अगर हमने फैसला किया था दोनों ने मिलके कि आधा घंटे का समय हम लोग बिताएंगे, उसमें से एक घंटा मान लीजिए आपको स्कूल के काम के लिए चाहिए, आधे घंटे का टाइम आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए बिता रहे हैं, तो आपने कब फोन उठाया और आपने कब उस फोन को रखा, ये दोनों ट्रैक करेंगे माता पिता और बच्चा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट बाउंड्रीज, दूसरा उसको ट्रैक करिए खुद दोनों मिलकर, और तीसरी चीज खुद आप भी समझिए कि ऑनलाइन प्रोटेक्शन आपको कैसे मिल सकती है. ये जानकारी चाहे आपको स्कूल की प्रिंसिपल से बात करके करनी पड़े या आपको स्कूल की टीचर से बात करके जानकारी लेनी पड़े और पेरेंट्स से जानकारी लेनी पड़े उनके बच्चे कितना समय बिताते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा अपने आप को इस बारे में जागरूक रखना पड़ेगा कि बच्चे कितना समय मोबाइल फोन पर और इंटरनेट पर, मोबाइल फोन के इंटरनेट पर बिता रहे हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चे को क्या क्या सेफ्टी मेजर्स आप कर सकती हैं, कितना स्क्रीन टाइम, आजकल तो एप्स आपको बता देते हैं कितना स्क्रीन टाइम आपका बच्चा यूज कर रहा है, तो वो उन सब डायमेंशंस को खुद को पहले जानकार पढ़ना पड़ेगा, तो वो जानकारी आपको टीचर से, आपको प्रिंसिपल से, आपको अपने फ्रेंड से मिल सकती है. तो अपने आप को ऑनलाइन प्रोटेक्शन के बारे में जागरूक करिए, फिर अपने बच्चे के साथ तय करिए कितना समय के वो बताएंगे. और जो अभी डॉक्टर अली कह रहे थे बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे की ऑनलाइन सेफ्टी के ऊपर देखते रहिए कि उनको उस ऑनलाइन स्पेस से ज्यादा मेंटल प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है, वो आइसोलेटेड तो नहीं हो रहे हैं. यू हैव टू वॉच द चाइल्ड्स बिहेवियर, आपको खुद देखना पड़ेगा कि बच्चे की आई कांटेक्ट की बहुत अच्छी बात करी डॉक्टर अली ने, तो क्या आपका बच्चा आपसे बात करने में, ऑनलाइन स्पेस के बारे में बात करने में क्या वो खुलकर बात कर पा रहे हैं कि वो बच्चे कुछ आपको लग रहा है कि कुछ छुपा रहे हैं. तो ये आपको ओपननेस रखनी पड़ेगी, फिर ही आप खुद दोनों मिलकर एक ऑनलाइन सेफ स्पेस तय कर सकते हैं.
1: जी, इस बीच हमारे कुछ श्रोता हमारे साथ बात करना चाहते हैं, फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं. हेलो.
2: हेलो, नमस्कार शालिनी
1: जी. जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: मैं अभिषेक बेदी बोल रही हूँ.
1: जी जी, स्वागत है कार्यक्रम में. क्या कहेंगे?
2: नमस्कार शालिनी जी, आजकल कुछ पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं. जैसे मेरे पास ही स्कूल है, मेरी दीवार के साथ, वहाँ टीचर ये ग्रेज करती है कि अगर बच्चे का रॉन्ग है उस पर अगर काटा लगा दिया तो पेरेंट्स शिकायत लेके आ जाते हैं. बच्चों को थोड़ी हमें ना सुनने की आदत होनी चाहिए. हम हर बात उनकी मान लेते हैं तभी हम प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं.
1: जी, ये एक बात इनकी सोच है और कुछ हद तक सही भी है, ऐसा हमने भी देखा है. क्या कहेंगे डॉक्टर अली?
2: हेलो, नहीं मैं बीच में सॉरी बात करती हूँ. ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं पेरेंट्स, जिससे कि बच्चे जो हैं वो इमोशनली बिल्कुल जीरो हो गए.
3: ये जो मुद्दा है, बहुत से पेरेंट्स अभी ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं. इसका एक तरीका ये है कि आप बच्चे को जिस भी स्पोर्ट्स में हो, जरूर ये कोशिश करें कि अपना बच्चा स्पोर्ट्स में रहे. स्पोर्ट्स में बच्चा रहेगा तो कभी जीतेगा कभी हारेगा, और इससे बच्चे को हार और उसके पेरेंट्स को हार में भी किस तरह से खुश रहना चाहिए ये स्पोर्ट्स सिखाता है. तो जो ओवर प्रोटेक्शन का जो मसला आ रहा है, इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है, घर में बैठे हैं तो आप अंताक्षरी खेलिए, कुछ ना कुछ इस तरह से गेम्स करते रहिए जिसमें बच्चा हारना और जीतना, पेरेंट्स हारना और जीतना दोनों को फेस करे. तो आपस में फिर सीख जाते हैं कि किस तरह से, भाई गलती हो तो गलती को गलती मानो, तो उससे फिर ज्यादा ओवर प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है.
1: जी,
2: सबसे बड़ी टीचर है. मुझे ऐसे लगता है कि कुछ साल मदर जो जॉब भी करती है, कुछ छुट्टी लेके बच्चों साथ इमोशनली जुड़े, उनको बचपन अपना सुनाए, उनकी बातें सुने, एक दूसरे के दिल में घुसे. जैसे
1: बिल्कुल यही बात अभी अलका जी कह रही थी कि कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, और जब कनेक्ट होगा, एक दूसरे की बात समझेंगे, तभी

0: बात से बात निकलेगी, दूर तलक जाएगी जो हम शुरू में भी बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद वेदी जी हमसे कनेक्ट करने के लिए। एक और हमारे श्रोता हमारे साथ हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार शालिनी
0: जी।
1: मैम
0: नमस्कार जी,
1: और
0: बताएं।
1: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: मैं रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ उत्तराखंड से।
0: जी बताएं, क्या पूछना है।
1: मुझे ये पूछना है कि जैसे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास और उनको उनका कैसे हो। आजकल के बच्चे ये देखे जाते हैं कि वो कमजोर टाइप के हैं, जैसे हमारे बराबर वो उतना काम या कुछ कर नहीं सकते, और जैसे उनको कुछ चीज बताओ तो वो ऐसे मायूस से हो जाते हैं। तो ये बच्चों का विकास और शारीरिक विकास कैसे होगा?
0: जी
2: बच्चों को अपने वार्तालाप के सेंटर में रखिए। मैं आपको एक बताता हूँ, बराक ओबामा को जब नोबेल प्राइज मिला था तो उन्होंने फोन करके अपनी बच्ची को जो 11 साल की है और दूसरी बच्ची 8 साल की, उन्होंने कहा मुझे देखो गो नोबेल पीस प्राइज मिला है। तो बच्ची ने कहा अरे आज आप भूल गए, आज बो का बर्थडे है, बो है उनका पोर्चुगीज पोर्चुगीज कुत्ता, घर का फैमिली डॉग। दूसरी बेटी ने कहा अरे 3 दिन का वीकेंड की छुट्टी है, आप कैसे भूल गए हमारा। तो मतलब जो नोबेल प्राइज है आप हम जान रहे हैं उसकी क्या अहमियत है। मगर बच्चे को अगर सेंटर, बच्चे के लिए उसकी समस्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम अगर माता पिता बच्चे को सबसे ज़्यादा सेंटर पे रखे, भाई वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, वो उसका मानसिक मतलब स्कोलेस्टिक स्कूल में परफॉर्मेंस, घर में परफॉर्मेंस, फिजिकल परफॉर्मेंस, अपने दोस्तों के साथ किस तरह से रह रहा है, अगर वो टच और कनेक्ट आप शुरू से रखेंगे तो ये जो समस्या आ रही है कि बहुत बच्चा मेरा कमज़ोर हो गया मैं, तो ये बातें नहीं आएंगी, बहुत हद तक आप इसको खत्म कर सकते हैं।
0: जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैसेज हमारे पास बहुत सारे आ गए हैं। ये मैसेज हमें लिखा है नानी तरिंग जी ने अरुणाचल प्रदेश से। उन्होंने लिखा है कि मेरे पिताजी अकेले पेरेंट हैं, बचपन से कभी माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कभी माँ के प्यार की कमी महसूस होने नहीं दी। बट लास्ट वीक पिताजी और मेरा झगड़ा हो गया, नाउ आई डोंट नो वॉट टू डू। ये पूछ रहे हैं।
2: देखिए आप पिताजी, आपने पहले ही बताया कि पिताजी ने मुझे जो है बचपन से ये किया है और आपकी अच्छी केमिस्ट्री है, तो आप वार्तालाप कीजिए। जैसे अलका जी ने बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द कम्युनिकेशन। डिसएग्रीमेंट तो हो सकता है, अभी तो आपकी शुरुआत है डिसएग्रीमेंट की, आगे जाके और बहुत सी बातें होंगी जिसमें डिसएग्रीमेंट होगा, पर ये डिसएग्रीमेंट का हल जो है आपस में बात करने से ही सुलझा जा सकता है।
3: और इसमें पहले आपका तो सवाल ही नहीं उठता ना। आप फोन उठाइए, सीधा जाइए और पिताजी से बात करिए और अपने डिफरेंसेस को खत्म करिए। जरूर जब आप एक दूसरे से बात करना शुरू करेंगी तो कोई ना कोई हल निकल आएगा।
0: जी अगर, और मुझे लगता है कि आप अभी देर ना करिए, जैसा अलका मैम कह रही हैं, जैसे अली सर कह रहे हैं, आप फौरन कॉल लगाइए अपने पिताजी को, उनसे बात कीजिए और जो भी आपकी मिस कम्युनिकेशन या जो भी गलत फहमियां हैं वो दूर करिए। और हमें मैसेज करके या मेल करके हमें जरूर बताइए कि आप कितने खुश हैं अब, क्योंकि आपको बहुत खुशी मिलेगी जब आप अपने पिताजी से बात कर पाएंगे और जो भी गलत फहमियां हैं वो दूर कर पाएंगे। आप हमें मेल कर सकते हैं healthaiadelhi@gmail.com पर, और अपने फीडबैक्स भी आप सभी हमें उस पर भेज सकते हैं। एक और हमारे साथ हमारे कॉलर हैं। हेलो
4: जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार,
4: प्रीति गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी जी स्वागत है, बताइए।
4: मेरा कहना है कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो एक शब्द आता है डिमेंशिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं मति भ्रंश, बुद्धि भ्रष्ट होना। तो मेरा पूछना है कि वास्तव में इसमें क्या होता है, मतलब ब्रेन में कुछ कमी आ जाती है, और बच्चों में भी ये बीमारी होती है क्या? कृपया विस्तार से बताइए।
0: जी मैं पूछती हूँ, हमारे एक्सपर्ट सुन रहे हैं आपकी बात को। जी
2: डिमेंशिया मतलब मेमोरी में स्लोली स्लोली कमी हो जाना। आमतौर पे ये बच्चों में नहीं होती है, आमतौर पे ये होती है 60-70 साल के बाद, स्लोली स्लोली जब एजिंग का शुरू होता है तब लोग अपनी अपनी मेमोरी खोलने लगते हैं। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक जो पुरानी मेमोरी है जो पक्की मेमोरी होती है बचपन की मेमोरी, वो इंसान बहुत जल्दी खोता नहीं है। बहुत जल्दी क्या होता है, जो रिसेंट पास की जो मेमोरीज है वो चली जाती है, पर अगर बच्चे में अगर इस तरह की कोई बात है कि वो भूल रहा है तो उसको जो है स्वास्थ्य कर्मी को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज के साथ ये होता है, पर उसके अंदर जो है घर वालों को समझ के उसके साथ ये करना ज़रूरी है। पर अगर बच्चे में अगर किस तरह से अडल्ट है, यंग अडल्ट है, एडोलेसेंट है, या बच्चे में अगर डिमेंशिया का कोई प्रॉब्लम है तो उसको दिखाना चाहिए।
0: जी धन्यवाद कॉल करने के लिए। और हमारे पास दो मैसेज मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो लगभग एक सी बात है, इसमें मैं दोनों को एक साथ लेना चाहूंगी। इन्होंने लिखा है, डॉक्टर साहब व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एब्सेंट फादर अगर सिंगल मदर है उसका क्या इम्पैक्ट होता है बच्चे की पर्सनालिटी में। और दूसरा प्रश्न किया है अशोक जी ने दिल्ली से कि मेरा 8 साल का बच्चा है और वो मेरे साथ रहता है, वाइफ मेरी वर्किंग है, 600 किलोमीटर दूर रहती है, बच्चे के इमोशंस को कैसे पहचाने, क्या करें कि उनको मदर की एब्सेंस फील नहीं।

0: हूं, तो कहीं भी जहां पर एक पेरेंट मिसिंग है तो कैसे डील किया जाए?
1: एक पेरेंट मिसिंग है तो कहीं ना कहीं तो इशू तो है, क्योंकि दोनों पेरेंट का बच्चे का बड़ा होना और एक पेरेंट में बच्चा बड़ा होना, ये दोनों में काफ़ी अंतर होगा। आप एज अ सिंगल पेरेंट, यही है कि हम बच्चे को अगर माता है तो माता पिता दोनों की तरह से प्यार दें, क्योंकि आप और अब आप काम कर भी करें हो, जैसे बच्चे को आप नींद में से उठने से देखें लास्ट में सोए तक खाना खिलाने का सारा कुछ काम आप कर रहे हो, तो आप बड़ा काम तो कर रहे हो। या तो आपका पेरेंट एब्सेंट है, या मतलब या तो डाइवोर्स केस है या फिर दूर है किसी काम की वजह से, तो आप वो अपना प्यार बच्चे को तो दे रहे हो। इसमें यह है कि जो इमोशनल कनेक्ट है, बहुत बार हम देखते हैं कि भाई सिंगल पेरेंट है, आप भी अपने काम में व्यस्त है, तो जो ज़रूरी है वो ज़रूरत वाला काम कर दिए, फिर उसके बाद अपने काम में लग गए। थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट इफ़ द सर्कमस्टेंसेस अगर ये मांगता है तो आपको माता पिता दोनों बनना पड़ेगा अगर सिंगल भी है तो।
0: जैसा अभी उन्होंने भी लिखा था अरुणाचल प्रदेश से उन्होंने, कि उनके फादर ने भी उनको बचपन से अकेले पाला और कभी उनकी कमी महसूस होने नहीं दी मदर की। तो ऐसा नहीं है, पूरी तरह से एक डेवलप पर्सनालिटी हो सकती है। अनिल कालरा जी, डॉक्टर अनिल कालरा हमें गुरुग्राम से सुन रहे हैं और लिख रहे हैं कि वेरी गुड प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। और ये हमें लिखकर भेजा है सरोज मल्होत्रा जी ने साकेत मेरठ से, नमस्ते डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे दूसरे बच्चे से कंपैरिजन बहुत करते हैं और एजुकेशन का प्रेशर बहुत है, मॉरल वैल्यूज बहुत कम है, ये सीखने की बहुत ज़रूरत है, किसी के पास फुर्सत नहीं है इसको सिखाने की।
1: ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन। सबसे पहले हमको बच्चों में और आपस में भी बात करनी है, तो कंपैरिजन हमको एकदम ख़त्म कर देना चाहिए। एवरी चाइल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल। जो भी बच्चा कर रहा है, कितना एग्ज़ाम में कितना मार्क्स ला रहा है नहीं ला रहा है, वो उस बच्चे की आप कितनी स्ट्रेंथ है वीकनेस है उस पर काम करें, ना कि हम किसी को भी कंपेयर करें। तो जो कंपेरिजन की टेंडेंसी है हमारी टीचर्स को, हमारे घर में पेरेंट्स को और दोस्तों में भी, इसको पहले ख़त्म करना चाहिए। अननेसेसरी, दिस इज़ अनहेल्दी कॉम्पिटिशन।
2: और इसके लिए आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट है ना वो खुद कंपैरिजन करना बंद करें। सबसे पहले आप खुद कंपेयर करना बंद करिए और फुर्सत की तो बात करिए ही मत, क्योंकि बच्चे के साथ अगर आप बच्चा दुनिया में लाए हैं ना और आपके घर में बच्चा है तो आपको फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी। उसकी सिर्फ फिजिकल केयर और फिजिकल नीड्स को नहीं लुक आफ्टर करना है, उसकी इमोशनल नीड्स को, उसकी सोशल नीड्स को भी आपको लुक आफ्टर करना है। इसीलिए अगर आपने पेरेंट बनने का जिम्मेवारी ली है तो आपको उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। आई मीन दैट्स अ गिवन। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि बिफोर यू बिकम अ पेरेंट बी रेडी फॉर पेरेंटहुड, बिकॉज पेरेंटहुड इज अ लॉन्ग जर्नी और उसके लिए उसका कोई एस्केप रूट नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। अगर आप बच्चे को लाए हैं तो उसको समय देना होगा।
0: जी, और आजकल हम यही देखते हैं कि ये जो बात हो रही है फुर्सत नहीं है, ये तो एक अलग बातचीत का मुद्दा है, लेकिन लेट मैरिजेस हो रही हैं, मदर्स और फादर दोनों लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं उनके, तो जब लेट मैरिजेस हो रही हैं, बच्चे प्लान कई बार नहीं कर रहे हैं या बहुत लेट कर रहे हैं, तो क्या वो भी इम्पैक्ट डालता है?
2: एब्सोल्युटली डालता है। और उसके लिए अगेन, जब आपने लेट मैरिज करी, आप अपने अपने करियर पाथ में बहुत एंट्रेंच हो गए हैं दोनों माता पिता, पर अगर आपके लाइफ में एक बच्चा है, जैसे डॉक्टर अली भी कह रहे थे, तो बच्चे को नानी, बच्चे को दादी नानी के ऊपर ना छोड़कर अपना समय, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए भी आपको बच्चे के साथ समय, सबसे ज़रूरी बच्चे के साथ समय, बच्चे को सुनना, बच्चे के साथ कनेक्ट बनाना, उसको कडल करना, उसको इमोशनल, उसके साथ चीजें करना, कहानी साथ बनाना, सैर पे साथ जाना, उसके साथ खेलना, तो एक बॉन्डिंग आपको बचपन से ही अपने बच्चे के साथ बनानी पड़ेगी, फिर अडल्टहुड में वही बॉन्डिंग आसान होती चली जाती है।
0: अच्छा, बहुत एक सेंसिटिव इशू मैं अभी लाना चाह रही हूँ जो हम अभी तक बात नहीं कर पाए हैं, कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं बच्चों को, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, और उस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको डील करना थोड़ा सा टिकलिश होता है पेरेंट्स के लिए, तो कैसे उनको अलग से डील किया जाए, ये भी एक मुद्दा है समझने का।
1: हाँ, अगर आपका बच्चा फिजिकली स्पेशली एबल्ड है, या मेंटली स्पेशली एबल्ड है, तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उसको सही डॉक्टर के पास दिखा के अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके एक्सेप्ट करें। बहुत से पेरेंट बहुत सा समय आदत डाल देते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, या हुआ है तो क्यों हुआ है, या हमको श्राप हो गया है या ये, तो उसको एक्सेप्ट करें कि ये है। कोई भी बच्चा हो या किसी में भी कोई भी फिजिकल एक स्पेशल ये है, तो कोई ना कोई उसका

0: दूसरा बात ऐसा होता है कि वो उसमें चैंपियन बन सकता है। तो उस बात को हम देखें, उसको मैं बच्चे को भी ये बताए कि भाई तुम्हारा एक चीज़ का प्रॉब्लम है, जैसे लोकोमोटर प्रॉब्लम है, हाथ नहीं है या पैर नहीं है, तो दूसरी कोई बात हो सकती है, उसको हम निखारे बाहर और बच्चे को उसके अंदर एक्सेल करने के लिए उसकी मदद करें, उसका साथ दें। बहुत बार होता है कि पेरेंट्स समझते हैं मेरे ही बच्चे को क्यों हुआ, तो पेरेंट्स के एसोसिएशन इंडिया में बहुत जगह है, आपके गांव में, आपके शहर में होंगे, पेरेंट्स एसोसिएशन एक नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में परिवार के नाम से चलता है, उस एसोसिएशन से आप जुड़िए। उसमें ऐसे ही बच्चों के बहुत से पेरेंट्स एक साथ आते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, गाइडेंस बताई जाती है, बच्चों को क्या लाभ मिलेगा सरकार से ये बताया जाता है। तो जब आप देखते हैं कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ इस जर्नी में, बहुत से लोग हैं, तो एक साथ मिलकर उस बच्चे को क्या उसके अंदर निखारा जा सकता है, उसको निखार के उसको चैंपियन बनाया जा सकता है।
1: जी, तो प्रयास किए जा सकते हैं। और आपने बताया कुछ जो ये साइट्स हैं, क्या हैं जिनके बारे में आपने बताया कि उनसे
0: ये
1: जुड़ा जा
0: साइट,
1: सकता
0: हाँ,
1: है?
0: परिवार करके आप डालोगे, वह एनजीओ फॉर पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, तो ये साइट पे जाके आप जुड़ सकते हैं इसके साथ।
1: अच्छा, और एक बहुत इम्पोर्टेंट और मुद्दा होता है कि कम्युनिकेशन तो कई बार होता है, लेकिन सेक्स एजुकेशन जो है उसमें अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स खुलकर अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है जब एक ग्रोइंग बच्चा है घर में, एडोलेसेंट हो, तो कितना इम्पोर्टेंट है। मैं दोनों का व्यूज जानना चाहूंगी, अलका जी आपका भी और डॉक्टर अली आपका भी इस बारे में।
2: एडोलेसेंस में एक चीज जो हमें ऑब्वियसली दिखने लग पड़ती है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो लड़कियों में अलग किस्म के चेंजेस होते हैं और लड़कों में अलग किस्म के चेंजेस होते हैं। इसके बारे में बातचीत करना बहुत जरूरी है। आपको सेक्स एजुकेशन तो आ ही जाएगी, पर सबसे पहले तो ये जो हमारे चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। तो हम जैसे समाज में लड़के और लड़कियां और इस बदलाव के बारे में बात से शुरू कर सकते हैं कि अभी आपको लग रहा होगा लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, उनको पीरियड्स आने शुरू हो रहे हैं, इससे बातचीत आप शुरू कर सकते हैं। एंड देन इवेंचुअली आप सेक्स एजुकेशन क्या होगा, तुम्हें लगता होगा लड़कों की रुचि तुम्हारे में बढ़ रही है, या लड़कों के साथ भी बात की जाती है। मेरे हस्बैंड ने खुद मेरे बेटे के साथ ये सबसे पहले उनका जो पहला लंच हुआ था इकट्ठा, ऑफकोर्स हैविंग बीन टुगेदर, बट एक मैन टू मैन लंच उनका इकट्ठा हुआ था, वही बात थी कि तुम्हें अब लग रहा होगा कि तुम अपनी क्लास की लड़कियों के साथ आइडेंटिफाई करो, किसी के साथ ज्यादा घूमना चाहते हो। ये इनके बारे में बातचीत करना बहुत जरूरी है, और ये बातचीत जब हम करने लगेंगे एज पेरेंट्स, तो वो फिर एक बॉन्डिंग बनती है, वो एकदम से नहीं हो सकती। अगेन, बचपन से अगर आप अपने बच्चे के साथ खुलकर बात करना शुरू करेंगे तो 10, 11, 12 साल की उम्र पे ये बातचीत बहुत आसानी से हो सकती है। पर हमने बचपन से ही कभी बात ही नहीं करी, कहानियां नहीं सुनाई, कहानियों से जुड़ते हुए क्यों क्यों के सवालों के जवाब नहीं दिए, सच जवाब, तब तक फिर आप बाद में एकदम से ये बात नहीं उठा सकते।
1: और जब पेरेंट्स से ओपन कम्युनिकेशन होगा तो फिर उनके किसी और सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि वो सोर्स कई बार गलत भी होते हैं, गलत डायरेक्शन में भी उनको भेज सकते हैं। आप क्या
0: तो सेक्स एजुकेशन के बदले अब हम लोग काम बात शुरू करें कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं पूरे इंडिया से कहना चाहता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया है। इसमें 8 अलग अलग बिंदु है। सबसे पहले हम बात करें रिलेशनशिप्स की, हम बात करें वैल्यूज कल्चर, हम कैसे बड़े हो रहे हैं, जेंडर को हम अंडरस्टैंड करें, जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या है, वायलेंस और कैसे स्टे सेफ कर सकते हैं इसकी बात करें, हेल्थ हेल्दी वेलबींग की बात करें, ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें कि लड़के में लड़की में क्या है, उसके बाद सेक्सुअल बिहेवियर और लास्ट में आता है सेक्स एजुकेशन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इन सब चीज़ों की बातें अगर हम बच्चा जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है स्लोली स्लोली अगर हम इन बातों पर करेंगे तो ये जो दिक्कतें आ रही है, डायरेक्टली सेक्स एजुकेशन की बात करना इंडिया के कल्चर में बहुत डिफिकल्ट है। पेरेंट्स के लिए हमने आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम में टीचर्स को भी इसकी ट्रेनिंग दी है, बट अभी भी टीचर ये बोलते हैं कि भाई कैसे पढ़ाएं यंग बच्चों को, बड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन इसके माध्यम से हम शुरू करते हैं, क्यों क्यों वाला जो सवाल जवाब होता है, तो आप यू कैन रीच टू दैट पॉइंट व्हेन पेरेंट्स एंड बच्चा आपस में बात कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 8 पॉइंट्स जो आपने बताए हैं ये सबको समझना बहुत जरूरी है। और चलते चलते बस मैं चाहूंगी थोड़ा नटशेल में आप बताएं क्या आज का जो विषय है उस पर आप हमारे श्रोताओं को बोलना चाहेंगे चलने से पहले।
2: आप पेरेंट हैं तो आपको अपने बच्चे के साथ बॉन्ड कब बनाना पड़ेगा, और वो बॉन्ड शुरू होगा बात करने से, लिसन करने से, उन्हें अंडरस्टैंड करके रिस्पेक्ट से उनको सपोर्ट करने में। तो बात करिए, सुनिए उनकी बात, समझिए उनकी बात, और फिर रिस्पेक्टफुली मिलकर सॉल्यूशन ढूंढिए। जरूर आपके लिए ये जर्नी बहुत ही सिंपल और

0: आसान रहेगी।
1: डॉक्टर अली,
2: सारे बच्चे का पूरा डेवलपमेंट देखिए, मानसिक, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल किस तरह से बच्चा कर रहा है। और शुरू से अगर बच्चे से, जैसे मैडम ने कहा कि बॉन्डिंग अगर होती है, तो ये सब के पता करना बच्चा हमारा किस स्थिति से गुजर रहा है। और स्पेसिफिकली फिजिकल तो दिक्कत आता है, मेंटल दिक्कत नहीं आता, बच्चे से वार्तालाप करने से, कम्युनिकेशन करने से ये चीज़ों को हम लोग हल कर सकते हैं।
1: जी, तो अपने सभी श्रोताओं का धन्यवाद देते हुए कि जो इस कार्यक्रम से जुड़े, हमें मैसेज किया, हमें कॉल किया। आप अगर हमें कुछ और लिखना चाहते हैं, आप हमें कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, या किसी कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। और अब धन्यवाद दूंगी अपने आज के रेडियो डॉक्टर्स का। डॉक्टर सैयद हुबे अली हमारे साथ रहे, आप हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ इंडिया में, और अलका मल्होत्रा जी, आप सोशल एंड बिहेवियर चेंज स्पेशलिस्ट हैं। आप दोनों आए इस विशेष अंक में, पेरेंट्स पर हमने ढेर सारी बातें की, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू।
1: और स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एफएम रेनबो दिल्ली पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इसके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड।

0: लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

हुई। अमेरिका और ईरान के बीच हमले जारी हैं। दोनों देशों ने सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और खेलों में पीवी सिंधु ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश किया। और फीफा विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हाय दोस्तों, स्वागत है आपका लम्हे प्रोग्राम में और मैं हूँ आपका आरजे चेतन। आसपास के वातावरण साफ सुथरा हो तो किसे अच्छा नहीं लगता है, और इसमें नगर निगम और स्वच्छता कर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो तो अपने तरफ से पूरा योगदान देते हैं, परंतु इसके बावजूद कुछ लोग गंदगी और कचरा करने से बाज नहीं आते। वह भी इंसान ही है, आखिर कितना साफ करेंगे। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास को साफ रखने की जिम्मेदारी स्वयं ही करना है, ताकि साफ सफाई से हम स्वस्थ रहे और हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहे। आसपास की रखो सफाई, इसमें हम सबकी भलाई। स्वच्छ रखेंगे वातावरण, स्वस्थ रहेंगे हम हर पल हर क्षण। घर को हर दिन करें सफाई। हमें हमारे घर के हर रोज सफाई करना चाहिए। वह कचरा इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, इससे कीटाणु पनपते हैं और बीमारियां फैलती है। घर में कुछ ऐसे कोने होते हैं जिसे नियमित रूप से सफाई करना चाहिए, जैसे रसोई घर। रसोई घर जहाँ हमारा भोजन इत्यादि बनता है, उसकी सफाई नियमित होना चाहिए। बर्तन को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए। गैस स्टैंड बर्तन रखने की जगह सभी जगह साफ करना चाहिए। रोज किचन की झाड़ू लगाना चाहिए, ताकि खाने के साथ हम कोई गंदगी अपने खाने में आने न दे, और साफ सुथरा भोजन ही खाए, साफ सुथरा किचन रखे। नियमित पोंछा और धोने जैसे सामान को धोए, बाथरूम को रोज साफ करें, दीवारें साफ करें, कुछ अच्छे से एंटीमाइक्रोबियल यूज करके साफ करें तो और भी अच्छा है। जहाँ हम हमारी गाड़ी रखते हैं, वहाँ रोज झाड़ू लगाए और बगीचे में सफाई रखे हो, कोई भी कचरा और प्रयोग में न आने वाले सामान को इकट्ठा न होने दे। यदि हम हमारे किचन, बाथरूम और पूरे घर में साफ सफाई नहीं रखेंगे, तो चचुंडर, कॉकरोच, मक्खी, चींटियाँ, मच्छर आदि पनपते हैं। और साफ सफाई में अगर हम लापरवाही बरतते हैं, बर्तन और अन्य सामानों के साथ ये गंदगी हमारे मुंह में जाते हैं, जिससे हमें कई तरह की बीमारियां पकड़ लेते हैं। यदि मच्छर पनपते हैं तो मलेरिया, कॉलरा, निमोनिया, पीलिया या सब बीमारी होती है जो कि गंदगी की वजह से फैलती है। इसीलिए हमें हमारा घर और आंगन की सफाई पर नियमित ध्यान देना चाहिए। इसीलिए पूरे घर पर नियमित झाड़ू और पोंछा लगाना चाहिए। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। धूल इत्यादि को पहुंचने और बगीचे में कहीं भी पानी नहीं होने देना चाहिए। किसी भी तरह की गंदगी बीमारी का लक्षण होता है, इसीलिए बचना चाहिए और नियमित साफ सफाई करना चाहिए। कुछ लोगों का सोचना है कि जहां गरीब व्यक्ति रहते हैं वही ज्यादा गंदगी होती है, परंतु ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि गरीबी और साफ सफाई का दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। गरीबी तो इंसान की मजबूरी है, परंतु सफाई तो उसकी जिम्मेदारी है। इसके लिए अमीर या गरीब मायने नहीं रखता, और घर की साफ सफाई में सबकी बराबरी से हाथ बांटने की मन

शाह होनी चाहिए। केवल घर के बड़े जिसमें माँ होती है, माँ घर के हर काम को करती है, तो क्या ये घर केवल माँ का होता है? उसमें रहने वाले सभी सदस्यों का नहीं होता है, इसीलिए सभी सदस्यों को मिलजुल कर इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहिए और ये सोच परिवार के हर सदस्य के नज़रिए पर निर्भर करता है। बचपन से ही बच्चों की देखभाल माता पिता और घर के अन्य सदस्य करते हैं, लेकिन बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उन्हें आपको सिखाना होगा कि साफ सफाई रखना ज़रूरी है। बचपन से ही उसे अपनी सफाई की शिक्षा दे, साथ ही उसे अपने आसपास की जगह को साफ रखना सिखाए। उसे बताए कि अगर साफ सफाई नहीं रखी जाएगी तो बीमारी होगी और बीमारी होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए उसे बताए कि अपनी साफ सफाई रखें और अपने आसपास की जगह को भी साफ रखें। साफ सफाई में अपने बड़ों की मदद करें, इससे वह भी साफ सफाई करना सीखेगा और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। साफ सफाई इंसान की फितरत होती है, वह अपने घर के आसपास तो साफ रखते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं घर ही को अपना समझते और अपने घर के बाहर झूठा और जो भी कचरा होता है उठाकर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी केवल घर के अंदर तक ही सीमित है। इसीलिए अपना फर्ज भूल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि सड़क, अपने घर का बगीचा साफ रखना उनकी जिम्मेदारी है। सड़क से ही गंदगी हमारे घर तक आती है और इसके साथ ही कई तरह की बीमारियां भी लेकर आती है। इसीलिए स्वयं साफ सफाई रखें और जो कर्मचारी और नगर निगम की गाड़ियां आती है उसमें अपने घर को साफ रखकर उन्हें अपना पूरा योगदान प्रदान करें। इस प्रकार हम हमारे घर के और आसपास की सफाई, हमारे स्वास्थ्य के साथ ही वातावरण को भी साफ रखते हैं और इसका प्रथम पाठ हम हमारे घर से ही मिलता है। यदि हम हमारे घर को और हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखेंगे तो धीरे धीरे शहर और शहर देश सभी जगह सफाई दिखने लगेगा। प्रदूषण में जमा हमारे देश की गिनती निचले स्तर पर की जाती है, वही हमें आगे और आगे प्रथम स्थान पर लाना होगा और इसकी शुरुआत हमें हमारे आसपास के वातावरण से शुरू करना होगा। देश की सफाई एकमात्र सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है। क्या इसमें नागरिकों की कोई भूमिका नहीं है? हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। विद दिस लवली कोट, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे इन लम्हे प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

स्वागत है आप सभी का। आप हैं अपनी दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। डिटॉक्स, जी हाँ, प्रोग्राम है अल्फाजिन डिटॉक्स, लेट्स डिटॉक्स। और आज की सीरीज लेट्स डिटॉक्स में हम क्या डिटॉक्स करने वाले हैं भाई, हमने आशियाना में भी बात की थी डिटॉक्स कीजिए उन लोगों

toxicity and the people who are making you uncomfortable. And welcome, coming up next, आपके लिए है बहुत ही खूबसूरत सा गीत, होसाना एक दीवाना था फिल्म से, माई वेरी ओन फेवरेट. इंजॉय कीजिए इसको, वापस आती है आपसे आपके साथ.

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
3: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

वल वल वल आप सभी के साथ हैं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जेन अपनी दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ. थैंक यू सौरभ फॉर वेलकमिंग मी एंड थैंक यू. और भाई मैं अपने सभी लिसनर्स को और दोस्तों को ये कहना चाहूँगी कि ओवर थिंकिंग ना एक शब्द होता है कि बहुत ज़्यादा आप सोचने लगते हैं चीज़ों को. और आपने देखा होगा आपके आसपास के लोग अपने में ही गुम रहते हैं, उनसे आप कोई भी बात कीजिए उनको पता ही नहीं चलता कि आप क्या कह रहे हैं या क्या नहीं कह रहे. वो अपने आप में ही खोए रहते हैं. असल में वो उनका दिमाग उस टाइम पर काम कर रहा होता है. यहाँ तक कि ये हालत हो जाती है कि अगर हम मेडिटेशन के लिए भी जाएँ और परमात्मा में लीन होने की कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें, तो भी हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड ओवर थिंकिंग. और कुछ लोग इतना सोचते हैं कि सोच में ऐसे खो जाते हैं कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर अपने ही दिमाग से होती है और ये उनको पता नहीं चलता. अपने से ही खुद से ही लड़ते रहते हैं. तो ओवर थिंकिंग को डिटॉक्स करना है. अपनी लाइफ से क्या डिटॉक्स करना है, लेट्स डिटॉक्स में आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग पर. और उसे डिटॉक्स करेंगे किस तरह से, बहुत सारी थेरेपीज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. फिलहाल तो म्यूज़िक थेरेपी है मेरे पास जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. एक और खूबसूरत सा गीत सुभान अल्लाह आप सभी के लिए.

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

इंसान की आदत भी अजीब है ना दोस्त, कि नहीं मिले तो सब्र नहीं करता और अगर कुछ मिल जाए तो उसकी कदर नहीं करता। कदर कीजिए, परमात्मा ने इतनी खूबसूरत आपको जिंदगी दी है। कहते हैं 44 लाख कितनी योनियां, मुझे तो शायद ठीक से गिनती भी नहीं पता कितनी योनियों को पार करके हम इंसान की योनि में आते हैं, और उसके बाद हम कदर नहीं करते अपनी जिंदगी की। आप सही हैं, आपका रंग रूप अच्छा है, आपके हाथ पांव अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। उन लोगों को भी देखिए ना जिन्हें कुछ मिला नहीं जिंदगी में, जो अपाहिज हैं, बेचारे हैं, जो आपके जैसे स्कूलों में नहीं पढ़े, इतना काम किया। तो ये जो सब्र होता है ना, ये सब्र ज़रूर रखना चाहिए। अगर ये सब्र आप रख लेंगे तो ये जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है ना, ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हमारे जो बड़े हैं हमसे हमेशा कहा करते थे कि अपने से नीचे देखो, अपने से नीचे देखने पर ज़्यादा संतुष्टि मिलती है कि हाँ मेरे पास वो सब कुछ है। और फिर आपके अंदर थैंकफुल नेचर आता है। रोज़ थैंक्स करो, सबको थैंक्स करो, परमात्मा का थैंक्स करो, अपनी फैमिली का थैंक्स करो, अपने आसपास के लोगों का थैंक्स करो, उन लोगों का थैंक्स करो जो आपके लिए काम कर रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे तो डेफिनेटली फर्क आ जाएगा और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। हमने खुद को थोड़ी ख़राब करना है ना ओवर थिंकिंग करके, हमें तो खुद के लिए जीना है और बहुत अच्छे से। एंड वेल, अभी एक और सॉन्ग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, शान एंड श्रेया घोषाल की वॉइस में। डू यू नो? ओ रियली, डू यू?

वेल वेल वेल, समय हो चला है अब मेरे चलने का. ठीक है, इसके बाद और कौन कौन से प्रोग्राम सुनेंगे आप वो मैं बता देती हूँ. आप सुनेंगे आशुतोष भारद्वाज के साथ सैटेलाइट्स, और चंद्रानी मुखर्जी लेकर आएंगी मैसेज मसाला मिक्स आप सभी के लिए. तो फिलहाल अपनी आरती को दीजिए इजाजत और बनी रही है आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ के साथ.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि ये निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये प्रमाण है कि जब भारत के युवाओं के नवाचार और उद्यमशीलता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक सुधारों का समर्थन मिलता है तो क्या हासिल किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये अंतरिक्ष को अधिक सुलभ बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में परिवर्तनकारी अध्याय की शुरुआत है। श्री बिरला ने कहा कि विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने अपनी बढ़ती तकनीकी उत्कृष्टता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन किया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगॉव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। इसका उद्देश्य इंडिया पोस्ट के लिए ऐसा आधिकारिक शुभंकर तैयार करना है जो संगठन के विश्वास, विश्वसनीयता, सेवा और डिजिटल नवाचार जैसे मूल्यों का प्रभावी प्रतिनिधित्व करे। ये प्रतियोगिता सभी नागरिकों के लिए है। प्रतिभागियों को माईगॉव पोर्टल के माध्यम से मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे अमरीका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। पीवी सिंधु जापान ओपन

बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यूफी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यूफी को चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बड़ी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि यह निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछा स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा किया और बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि यह रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कांग को परात 41 डिग्री चया मगावर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिलेगा। बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार आनंद एल रॉय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए दिया जाएगा। और खेलों में पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार देर रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The 72nd National Film Awards were announced today. The Best Film Critic Award will be given to Sanjeev Srivastav. The award for Best Writing on Cinema will be given to K. Pradeep Kumar Shetty for his Kannada book. In the non-feature film category, Shivpal Singh Kang will get the Best Music Direction Award for Bharat Iktale's Degree Chaya Magawar. Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity, Ekta Ka Prateek. Best Short Film is Hamsafar in Marathi. The Best Non-Feature Film is Bhangar, directed by Sumira Roy. India's first privately developed orbital rocket Vikram 1 under Mission Agman has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12.05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. Our correspondent reports that the milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Developed under Mission Agman, the rocket is intended to provide cost-effective and flexible launch services for small satellites. Prime Minister Narendra Modi congratulated the Skyroot Aerospace team over a telephone call. Mr. Modi said the successful launch of Vikram 1 under Mission Agman is a major milestone in India's journey towards self-reliance in the space sector.
1: Success. Aman, Bharat, aur puri team, bahut bahut badhai. Do kaam kiye hai. Ek to aasman mein manaye paudhe gaad diye hai, aur dusra जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ.
2: Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh also congratulated Team Skyroot on the successful launch of Vikram 1. The minister said the mission marks a major milestone for India's expanding private space sector. In Gujarat, 8 people were killed and 10 others injured today after a massive fire broke out at a firecracker manufacturing and processing unit on the Ramol Gatrad Road in Ahmedabad. Our correspondent reports that the Rapid Action Force personnel rushed to the site immediately, retrieved 8 bodies and rescued the trapped and injured workers from the blazing structures. The injured have been admitted to nearby hospitals for treatment. Several firefighting vehicles also rushed to the spot and brought the blaze under control. Cooling operations are currently underway. In West Bengal, Union Home Minister Amit Shah today visited the Border Security Force camp at Jumagach in Siliguri and interacted with BSF personnel. He also planted trees and attended Prahari Sammelan. Discussions were held on strengthening border areas, birth and death registration and the law and order situation. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, has said that grievance redressal should go beyond the disposal of complaints and focus on addressing the concerns and aspirations of pensioners. Dr. Singh added that pension-related disputes should be resolved administratively so that pensioners are not forced to approach courts. He made these remarks while addressing the second national workshop on pension litigation in New Delhi today. Dr. Singh informed that the Department of Pension and Pensioners' Welfare has introduced several citizen-centric reforms and has digitized pension services through online systems to improve transparency and efficiency. 7 people were killed and 51 others injured in overnight Ukrainian drone attacks on Russia. Russian officials today said 2 sprawling warehouses of Russia's major online retailer were hit by Ukrainian drones overnight, one in the town of Kotovsky in Tambov region and another in Elektrostal near Moscow. In FIFA World Cup, European rivals France and England will lock horns in the third-place playoff match at the Miami Stadium tonight. The match is scheduled to begin at 2.30 a.m. Indian Standard Time. And with that, we end this news bulletin.
3: বাতৰি পাছতেই পুনৰ উভতি আহিছোঁ।

0: दिनं भारतस्य अन्तरिक्षयात्रायाः ऐतिहासिकः क्षणः इति उद्घोषितम्। आतंकवादं प्रति भारतस्य शून्य सहिष्णुता न केवलं काचन उक्तिः अपितु कश्चन दृढः संकल्पः इति रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अवोचत्। गगनगर्जनं पुरस्सरं वृष्टेः कारणात् उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम राज्येषु श्वः यावत् अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना। अपि च टोक्यो नगर्यां जापान ओपन प्रतियोगितायाः महिला एकल वर्गस्य अंतिम द्वन्द्वे ससंभ्रमं प्रविष्टा पीवी सिंधुः। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतस्य प्रथमं निज विकसितं कक्षीयान्तरिक्षयानं विक्रम प्रथमं अन्तिम प्रणोदन प्रक्रियां सम्पूर्य कक्षायाम् उपग्रहान् सफलरूपेण प्रवेश्य स्वकक्षां प्राप्नोत्। अस्य यानस्य प्रक्षेपणम् अद्य मध्याह्ने 5:25 आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटायाः सतीश धवन अन्तरिक्षकेन्द्रात् समजायत।
1: 2-1-0
2: And we have lift off of Vikram 1, India's first private orbital launch
3: lift
2: vehicle.
3: Off, normal.
2: Vikram 1 ne apni udan bhari pratham charan ka prajwalan.
0: अस्माकं वार्ताहरेण विज्ञापितं यत् अनेन ऐतिहासिक पदक्षेपेण भारतं निजकक्षा प्रक्षेपण क्षमतां प्राप्तवत्सु विश्वस्य देशेषु तृतीयान्यतमो संजातः। मिशन आगमन इत्याख्येन अभियानेन विकसितं एतदन्तरिक्षयानं लघु उपग्रहाणां कृते अल्पव्यययुक्तं प्रक्षेपणसेवायै वर्तते। भारतीय अंतरिक्ष उपक्रमस्य जनकः डॉक्टर विक्रम साराभाई इत्याख्यस्य नामना व्यपदिष्टस्य अस्य विक्रम वन यानस्य रचनायां त्रिस्तरीय दृढ़ प्रणोदक चरणानि सहैव अमोघ कक्षा प्रवेशाय रमण इत्याख्यः देवेन्द्रन गंत्रं प्रयुक्तमस्ति। इदं यानं उपग्रहान् पृथिव्याः निम्न कक्षायां स्थापयितुं पूर्णतया सामर्थ्यं भजते। अंतरिक्ष कक्षायाम् अस्य सफल प्रवेशात् परं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दूरभाष माध्यमेन स्काईरूट एरोस्पेस दलस्य वैज्ञानिकानां च अभिनन्दनं व्याहृतवान्। श्रीमोदी न्यगादीत् यत् विक्रम वन यानस्य अयं सफलोत्कर्षः अंतरिक्ष क्षेत्रे देशस्य आत्मनिर्भरता यात्रायां कश्चन प्रमुखः कीर्तिस्तम्भो वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् इयम् ऐतिहासिकी उपलब्धिः देशस्य यूनः नवीनोन्मेषाय अग्रे आगन्तुं प्रेरयिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अब्रवीत् यत् भारतस्य आतंकवादं विरुध्य असहिष्णुता न केवलं वक्तव्यं नास्ति अपितु कार्याचरणस्य कश्चन दृढसंकल्पो वर्तते। अद्य नवदिल्ल्यां फॉरेस्ट फर्स्ट कॉन्क्लेव इत्यत्र संबोधयन् श्रीसिंहः स्पष्टीकृतवान् यत् भारतम् आतंकवादिनः न केवलं स्वसीम्नि प्रहरिष्यति अपितु आवश्यकतानुसारं तेषामाश्रयेषु प्रविश्य अपि दण्डयिष्यति। सः अभाषत यत् सिन्दूराभियानावधौ समग्रं विश्वम् अस्य साक्षी अभवत् यत् तदभियानं तान्त्रिकयुद्धपद्धत्याः कञ्चन उत्कृष्टम् उदाहरणम् आसीत्।
4: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया। हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: मंत्री सविशेषं प्रख्यापितवान् यत् विगतेषु द्वादशसु वर्षेषु नरेन्द्र मोदी सर्वकारेण रक्षाक्षेत्रस्य पुनरुद्धारः सुदृढीकरणं च स्वस्य शीर्ष प्राथमिकतासु स्वीकृतम्। श्रीसिंहः अकथयत् यत् सर्वकारेण न केवलं भारतस्य रक्षाक्षेत्रं सुदृढीकर्तुं संकल्पः धृतः अपितु रक्षा आवश्यकतानां पूर्तये देशस्य आयात निर्भरतां न्यूनीकर्तुमपि दृढः प्रयासो विहितः।
4: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए

0: अरे बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
1: संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। बहुभ्यः दिवसेभ्यः नवदिल्ल्याः जंतर मंतर प्रांगणे अनशने निरतः सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुकः ह्यः रात्रौ आवश्यक चिकित्सकीय सेवायै सर्वकारीय चिकित्सालयं प्रति नीतः। नवदिल्ल्याः आरक्षी उपायुक्तः सचिन शर्मा अवोचत् यत् श्री वांगचुक इत्यस्य उत्तरोत्तरं क्षीयमाणं स्वास्थ्यं विचिन्त्य चिकित्सकानां विशेषज्ञ परामर्शेन तथा दिल्ली उच्च न्यायालयस्य आदेशानुपालनार्थं च सः चिकित्सालयं प्रति स्थानान्तरितः। तस्मिन्नेव समये सफदरजंग चिकित्सालयस्य मुख्याधीक्षिका डॉ. चारु बम्बा संसूचयामास यत् श्री वांगचुकः सम्प्रति निरन्तर चिकित्सकीय निरीक्षणे अस्ति तथा तस्मै समुचितः उपचारः प्रदीयते। डॉक्टर बम्बा इदमपि विशदीकृतवती यत् सः पूर्णरूपेण सचेतनो वर्तते। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन श्वः यावत् उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम राज्येषु अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय छत्तीसगढ़ उत्तराखंड राज्येषु अपि अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागस्यास्य आधिकारिक विवरणानुसारं अद्य बिहार मध्य प्रदेश पूर्वीय उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश झारखंड कर्नाटक केरल माहे ओडिशा राज्येषु तथा समस्त पूर्वोत्तर प्रान्तेषु अतिवृष्टिः संभाव्यते। अनेनैव सह श्वः यावत् तटीय आन्ध्रप्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा क्षेत्रेषु वज्रपात मेघ गर्जन पुरस्सरं तीव्र झंझावातस्य अपि महती आशंका वर्तते। तत्रैव उत्तर भारते दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब प्रान्तेषु अद्य नागरिकाः तीव्र उष्ण आद्र वातावरणेन नितरां संतप्ताः भविष्यन्ति। टोक्यो नगर्यां जापान ओपन प्रतियोगितायाः महिला एकल वर्गस्य उपान्त्य द्वन्द्वं विजित्य द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री भारतस्य सुप्रसिद्धा क्रीडिका पीवी सिंधुः अद्य अंतिम चरणे स्वस्थानं सुरक्षितं अकरोत्। तस्याः प्रतिद्वन्द्वी चीन देशीया चेन यू फेई प्रतियोगितायाः द्वितीय चक्रे अकस्मात् अस्वस्थता कारणात् क्रीडांगणं परित्यक्तवती, येन सिंधु अयाचितं विजयम् अवाप्य अंतिम चरणं प्रति सोत्साहं प्रातिष्ठत। अस्मिन् द्वन्द्वे सिंधुः प्रथमं चक्रम् 21:19 इत्यांकान्तरालेन विजित्य द्वितीय चक्रे अपि 15:10 इति अंकैः अग्रे धावन्ती आसीत्, यदा चीन देशीया क्रीडिका स्पर्धायै असमर्था संजाता। जापान ओपन उपाधिं समलंकर्तुं बद्ध परिकरा पीवी सिंधुः श्वः अंतिम चरणे जापान देशस्य अकाने यामाचुची इत्यनया सह क्रीडिष्यति। इति वार्ताः।
2: बातरी पासते पुनर्भति आहिसु जुबवाणीर अनुष्ठानर माजलै। एया আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈ আছে মেডিয়াম এফৰ 299.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টজত আৰু DRM ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত। প্ৰিয় শ্ৰোতা, নিবেদন কৰিছোঁ মনালিছা দাসৰ কণ্ঠত আধুনিক গীত।

0: भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरो स्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयर स्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछ स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा कर बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने एक पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर चर्चा हुई। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार कन्नड़ भाषा की पुस्तक नानीरु विदे निमा गागी नादीरु विदे नाना गागी के लिए प्रदीप कुमार शेट्टी को दिया जाएगा। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कंग को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन युफेई को पहले गेम में हरा दिया। दूसरे गेम में चेन युफेई की चोट के कारण सिंधु को वॉक ओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The 72nd National Film Awards were announced today. The Best Film Critic Award will be given to Sanjeev Srivastav. The award for Best Writing on Cinema will be given to K. Pradeep Kumar Shetty for his Kannada book. In the non-feature film category, Shivpal Singh Kang will get Best Music Direction Award for Parat 41, Digra Chai Magavar. Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity, Ekta Ka Prateek. Best Short Film is Hamsafar in Marathi. The Best Non-Feature Film is Bhangar, directed by Sumira Roy. In Gujarat, 5 people were killed and several others injured today after a massive fire broke out at a firecracker manufacturing and processing unit on the Ramol Gadrad Road in Ahmedabad. Our correspondent reports that the Rapid Action Force personnel rushed to the site immediately and retrieved the dead bodies and rescued the trapped and injured workers from the blazing structures. Several firefighting vehicles also rushed to the spot and brought the blaze under control. Cooling operations are currently underway. The injured have been admitted to nearby hospitals for treatment. Expressing deep condolences, Chief Minister Bhupendra Patel termed the incident extremely tragic and prayed for the deceased and the speedy recovery of the injured. The Chief Minister announced an ex gratia assistance of 4 lakh rupees to the next of the kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. In Andhra Pradesh, 5 fishermen lost their lives after drowning in the Godavari River near Golagudam village of Polavaram district today. The victims had gone to the river for fishing when they were reportedly swept away by the strong current. Police, along with local rescue teams and villagers, launched a search operation after receiving information about the incident. The bodies of all the 5 victims were recovered from the river. Chief Minister N. Chandrababu Naidu expressed profound grief over the incident and conveyed his condolences to the bereaved families. India's first privately developed orbital rocket Vikram-1 under Mission Agaman has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12:05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. Our correspondent reports that the milestone makes India the 3rd country in the world to achieve private orbital launch capability. Developed under Mission Agaman, the rocket is intended to provide cost-effective and flexible launch services for small satellites. Prime Minister Narendra Modi congratulated the Skyroot Aerospace team over a telephonic call. Mr. Modi said the successful launch of Vikram-1 under Mission Agaman is a major milestone in India's journey towards self-reliance in the space sector.
1: और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ.
2: Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh also congratulated Team Skyroot on the successful launch of Vikram-1. The minister said the mission marks a major milestone for India's expanding private space sector. The Indian Olympic Association, IOA, today announced that Olympic medalists Meerabai Chanu and Lavlina Borgohain will serve as India's flag and baton bearers at the opening ceremony of the Commonwealth Games in Glasgow. The opening ceremony of the scaled-down multi-sport event will be held on the 23rd of this month at the OVO Hydro Arena. In a press release, IOA President P.T. Usha said, the honour recognises their outstanding contribution to Indian sport. And in a FIFA World Cup, European rivals France and England will lock horns in their third-place playoff match at the Miami Stadium tonight. The match is scheduled to begin at 2:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.

0: ভজন শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। ক্ষন্তেক পাছতেই অৰ্থাৎ 8:45 সমাচাৰ সন্ধিয়া, 9:00 News@9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडम्बर मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
2: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
1: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता।

0: अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
1: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। बल्कि 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ ओडिया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम वन में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड

0: स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
2: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
3: इट्स ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
1: हुरमुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमरीका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसैलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले दो दिन में डिसैलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसैलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंता बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में एक व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थीं। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में

0: आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरो मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. 72nd National Film Awards announced. Yami Gautam wins Best Actress Award for Article 370, Mammootty for Brahma Yugam and Kartik Aaryan for Chandur Champion share Best Actor Award. 20 rebel TMC MPs who joined National Citizens Party of India get Lok Sabha Speaker's approval for separate seating in the House. Massive fire at a firecracker factory in Ahmedabad claims 5 lives. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. US-Iran fighting over Strait of Hormuz escalates with attacks on key infrastructure and military targets. Olympic medalists Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain to be India's flag and baton bearers at opening ceremony of Commonwealth Games in Glasgow. And in FIFA World Cup, France to clash with England for third place at Miami Stadium tonight. Hindi film Article 370 has won the Best Film Award in the 72nd National Film Awards. Announcing the awards today in New Delhi this evening, Chairman of Jury Feature Film Jairad said Mammootty and Kartik Aaryan have won the National Film Awards in Best Actor category for their movies Brahma Yugam and Chandur Champion. He said Yami Gautam will be given the Best Actress Award for her performance in the film Article 370.
2: Best actress in leading role, Article 370, Hindi film. Renowned performance that portrays a law enforcement agent's unwavering pursuit

0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयजशीतलां।